0: सुनिए
1: आप, आपने तो कहा था कि
0: ठीक ही तो कहा था, फाइव स्टार होटल में रहता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ। ये वो साहब है ना, उन्होंने चिट्ठी दी आपको, रात को खाने पे बुलाया।